0: Radiation, the number one station for the Bargle for Asian. Bargle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए, मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सत्या ने बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
0: Dev, respect to you, bro. Plot number tera, plot number mera. That's what I'm trying to get at. Number mera. But yeah. Press the button correctly. This track, Verdian. The last track, got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the Bargle Asian.
6: One time.

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, like, looking over, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, it's just too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radio Asian, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Badam. Here we go.
3: Radio Asian, the number one station for the Pagal Asian.

0: मेरी माँ ने मेरे को कैलकुलेटर दिया था। आ कोई एमीटेड कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगता सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग करता, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो माँ ने मैंने इन्ना बड़ा तोहफा दिता कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्होंने चप्पी मारी, पता उन्होंने की किया, वो वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों ने हमेशा चप्पियां मार दी थी पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पा के क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नु सदूंगे।
4: उपड़ वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनू बुलाया, 500 पाउंड मैनू दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमड़ा किथे आ?
2: इत्थे आ उपड़, 10 दिनां च 1 रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बड़कर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी, 2000 पाउंड दान कर लो। मेरे नाल जप्पो,
5: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू, रैंडम गाइस ऑफ सोहो रोड कंपेल यू, पर्ली अंकल्स विद एक्स-रे ग्लासेस कंपेल यू टू लीव दिस गर्ल्स फॉरसेकन बॉडी सो शी इज फ्री टू ड्रेस सेंसिबली एंड डांस टू प्रॉपर म्यूजिक ऑन
6: रेडिएशन, the number one station for the Bagel Asian.
7: Good morning, brothers and sisters. I hope you're happy and hope you're well. This is Davin Radiation, the number one station for the Asian invasion. Okay, dago gaya theek hai. What are you doing, bro? Mere kaji, go to bed. Go to bed. Sonja. The night shift. You gotta sleep properly, look after your heart. The two paths. Are you well? 3 hours late. The show is meant to be concluding now. It should have ended like 2 minutes ago, actually, yeah. The amount of technical hurdles and things you got to deal with in a studio, especially regarding heat and good safety practices and all the rest of that and stuff overheating, it just makes you worry, and installing fans and testing fans. Not from OnlyFans, but like from genuine, like proper shops. But yeah, that's what I'm trying to get at. So yeah, I think this is the first show that I've done in like a month and a half, yeah. And hopefully, I know it's going to be a hit. There you go, man. Should you want to send your tracks over to the show, send them over to newmusic@radiation.london or punjabi@radiation.london. Got to have that belief in yourself. Because there's one part, I was so stressed out, yeah, with all the radio stuff. I thought, I can't cope. I'm just going to relax. I thought, no, a message is coming through saying, where are you? But okay. Then from a record label, like, Dad, what's going on? Is everything okay, mate? Oh, yeah, everything's okay. I've got okay. Want the feedback on my track? I've got okay, I'll play it out through our system over here, even though the system's not configured properly. But everything, I'll be doing some little tweaking over here on the audio bits, and should be sounding nice, yeah. So let's do this thing. Reka, Sonja Yard. So, first track of the show. Let's go back in time here. Play something old, but amazing. Intermix, Satorn Wali.
6: Radiation, the number one station for the Asian invasion.

0: लौटते वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द यू ऑलवेज से, नो वन हैज सेंट इन और रेफरेंस्ड अ लाइन मोर पर्वी और लेट्रस देन दैट वन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यू नो, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah, right at the end, right, looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, this is too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Chinda, Local Attraction, and Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Padam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.